ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तस्मस्यादिलक्ष्यं एकं नित्यं विमलचलं सर्वदिशाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमाम्यम् ओम शांति शांति शांति। दीप नारायण भगवान की जय। देवेश्वर महादेव की जय। माधव कृष्ण भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गुड इवनिंग ऑल डियर वंस, सैल्यूटेशन टू द कॉस्मिक लाइट, एडोरेशन टू द डिवाइन मास्टर्स एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। Nice to be again in the Vancouver, and I enjoy to go to the Stanley Park to take the lot of oxygen. Vancouver as well as Vienna have the same category of the good environment, good fresh air, and both Vancouver and Vienna have the same horoscope according to the astrology. Well, we are here to hear something about yoga. Yoga is

गगनसदृशं तस्मस्यादिलक्ष्यं एकं नित्यं विमलचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतम नमाम्यम् ओम दीप ज्योति पर ब्रह्म दीपम सर्वे मोहनम दीपन सजते सर्वं संध्या दीपम सर्व सत्यम।

0: अलकपुरी जी महादेव की। सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय।
1: विश्व गुरु महामान्य स्वामी गुरुदेव की जय।

भगवान की। सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की। सत्य सनातन धर्म की जय।

0: सोऽहं सगुण ब्रह्म श्रीदीप परिपूर्ण नारायणाय नमः। ॐ सोऽहं सगुण ब्रह्म श्रीदीप परिपूर्ण नारायणाय नमः। ॐ श्री अलकपुरी जी महादेवाय की जय हो। अलकपुरी जी महादेव की, देवादिदेव देवपुरी सा महादेव की, हरि गुरुदेव भगवान दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। ओम शांति शांति शांति।
1: विश्व गुरु महामंडलेश्वर परम हंस स्वामी महेश्वरानंद स्वामी जी गुरुदेव की जय।
0: Hey, where the air is going? Air is going from this side. Sure. Thank you. You can put it near Mahaprabhuji here, maybe. You're here.
2: Yeah.
0: Oh, Mahaprabhuji, that's for you, very good. Okay? Yeah.

श्री श्री देव पुरी समादेव धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान सत्य सनातन ओम शांति शांति

श्रीदीप नारायण भगवान की, अलकपुरी जी महादेव, देवपुरी जी भगवान की जय।

पर प्रभु जी साक्षी सुदयात्मा। दर ध्यान सोहम मुनि मोहन सुख रूप से जा ध्यात्मा प्रभु सुख।

श्रद्धा विश्वास मेरा कम नहीं होवे। ओ लॉर्ड, माय श्रद्धा, माय कॉन्फिडेंस, माय फेथ, माय फेथ एंड माय कॉन्फिडेंस इज वेरी लिटिल डिफरेंट, शुड नॉट रिड्यूस, शुड नॉट डिम, बट दिन दिन दूना बढ़ता रही जो, डे बाय डे मोर एंड मोर शुड इंक्रीज श्रद्धा। सो सत्संग, हरि कथा एंड श्रद्धा, ईश्वर भजन एंड द फोर्थ नवदा भक्ति ऑफ नारदा, ईश्वर भजन। ईश्वर द गॉड, भजन मीन्स सिंग द नेम ऑफ गॉड, रिपीट योर मंत्रा, मेडिटेट ऑन द गॉड, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, गॉड इज गॉड। डजंट मैटर इफ समवन ब्लेम्स, लेट देम ब्लेम, समवन डजंट लाइक द सन and takes the dust full of the hand and throws the dust to the sun, what happens? It will fall on him. It will not come to the Lord. Once someone was writing to Guruji, Holy Guruji, about Maheshwaranand something, and Holy Guruji wrote back, if someone throws the dust to the sun, will fall on them. Who is blaming Maheshwaranand, this karma will go back to them. And it happened. So, Ishwar Bhajan, God is God. Because you don't like that God, or you don't like me and you don't believe my God, and I don't like you so that I don't believe your God. This is problem between you and me, not in between God and us. That's it. Therefore, God is God. Ishwar Bhajan, think of God.

0: सतगुरु भगवान की
1: जय हो।
2: अच्छा बोल दे मामा, एक आध बोल दे फिर से
3: बताओ। थे
0: बोल ले
3: नहीं, हां ये
2: ले।

0: नींद खा जरा जे
1: नींद वा वेम कर
0: मजो छे थोड़ी काटी के महाराज काटी
1: आ जा आ जा
0: आ जा आ
2: चलो आवाज बोलो साहब।

हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवनपुरी जी महाराज की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परम स्वामी श्री महेश्वर सतगुरु देव की जय।

हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु माधव कृष्ण भगवान की जय हो। विश्व गुरु महामंडलेश्वर महेश्वरानंद पुरी जी गुरुदेव की जय हो।

0: Like he
1: बोली गुरु श्री देव नारायण भगवान की
2: जय।
1: श्री स्वामी वर्षन जी गुरुदेव की
2: जय।
1: मीनिंग इज माय लाइफ इज कनेक्टेड और डायरेक्टेड टू lotus feet of Gurudev. Nothing else makes me more happy than that.

पाने की। सो द सेम शिवा एंड पार्वती दे वेर पासिंग थ्रू वन विलेज। इट इज सेड द स्पिरिचुअल डिवाइन इनकार्नेशन ऑलवेज दे लुक यंग एंड ब्यूटिफुल। So though Parvati was very many years she had, but she was always young.